भाव नावट पुरुदु कलसित रागयं तेतनुवे रागय भावित सित विनिविद गिननुयान्नीय।